ओंकार करे अंतर सर्व निरंतर जी हरे को पुरुष माना एक दाते एक भिखारी जी सब तेरे जोज वडाना तू आपे दाता आपे भुगता जी हों तुद बिन और न जाना तू पार ब्रह्म बेअंत बेअंत जी तेरे क्या गुण आव खाना जो सेवै तो जी जन नानक तिन कर बाणा हर त्यावे तो जी से जन जो में सोहवासी से मोहत पहे जिन हर त्याया जी तिन तोटे जम की फासी जिन निर्भाओ जिन हर निरभाओ त्याया जी तिन का पाओ सब गवासी जिन सेव्या जिन सेव्या मेरा हर जी त्यारा रू समासी से तन जिन हर त्याया जी चना ने तिन बल जासी तेरी पग पंडार जी परे बेअंत बेअंता तेरे पग सलाह तो जी अनक अनेक अनंता तेरे अनेक तिन करे हर पूजा जी तब तापे जावे बेअंता तेरे अनेक पड़े बहु सिमर सा जी कर क्रिया खट कर्म करंता से पग प्रज नानक जी जो पावे मेरे हर भगवंता तू आदि पुरु परम प्रकर्ता जी तो जे वड़वर न कोई तू जोग जो एको सदा दा तू एको जी तू निचल करता सोई तुदे आपे पावे सोई वरते जी तू आपे करें सोई तुदे आपे से सब पाई जी तुद आपे से सब गोई जनान गुण गावे करते के जी जो सबसे का जानु आसा मल्ला चौथा तू करता सचार में डासाई जो तू पावे सोई थी सी जो तू दे सोई हो पाई रहाओ सब तेरी तू सब नीत आया जिसनो कृपा करे ते नाम रतन पाया गुरमह लादा मन मुखवाया तुद आ विछोड़िया आ मिलाया तू दरियाओ सब तुझी माहे तो बिन दूजा कोई ना है जी जंद सब तेरा खेल विजोग मिल विछड़िया संजोगी मेल जिसनो तू जाना है सोई जन जाने हर गुण साधी आव खाने जिन हर सेव्या तिन सो पाया सहजे ही हर नाम समाया तू आपे करता तेरा किया सब होए तुझ बिन दूजा वर न कोए तू कर वेखे जाने सोए चन्नान गुरमुख पर टोया सा महला पहला तेत सर्वले भैले नवासा पानी पाव तिने किया पंगज मो पग नहीं चाले हम देखा तै डूबे अले मारे न चेस मुड़ मना हर बिसर तेरे गुण गलिया रहाओ ना हूं जति सती नहीं पड़िया मूर्ख मुखदा जन्म भया प्रणवत नानक तिनकी सरना जिन तो ना ही विसरिया आसा महला पंजवा पई प्राप्त मान हुदे हुरिया गोबिंद मिलन की है तेरी बरिया अवर काज तिर किते न काम मिल सा संद पाई केवल नाम सरंजाम ला पौ जल तरन के जन बिरथा जात रंग माया के रहाओ जप तप संयम धर्म ना कमाया सेवा साध न जानिया हर राया कहो नानक हम नीच क्रमा शरण परे की राखो शर्मा पातशाही दसवें का बेवाज बेनती चौपाई हमरी करो हाथ दह रक्षा पूर्ण होए चित की इच्छा ताव चरण मन रहे हमारा है अपना जान करो प्रतिपारा हमरे दोष है तुम कहावो आप हाथ दे मोए बचावो
सुखी वसे मोरो परवारा, सेव से सबे करतारा। मोर अच्छा निज कर दया करिए, सबैर को आज सिंगरिय। पूर्ण होए हमारी आसा, तोर पहिन की रहे प्यासा। तुम्हें शाड़ कोई अवर ना त्याऊं, जो बर जाऊं तुम ते पाऊं। सेवक से कह मारे तारी है, चुन चुन होत्र मारे मारी है। आप हाथ दे मुझे अबरी है, मरन काल का त्रास नवरी है। हो जो सदा हमारे पच्छा, श्री तो जो करी हो रच्छा। राह ले मोए राखण हारे, साहेब संत सहाय प्यारे। तीन बन दुष्टन के हमता, तुम हो पुरी चतर दास कांता। काल पाए ब्रह्मा बहुतरा, काल पाए शिव जी अवतरा। काल पाए गर्भे प्रकाशा, सगल काल का किया तमाशा। जवन काल जोगी शिव कियो, वेद राज ब्रह्मा जो थियो। जवन काल सब लोग सुवारा, नमस्कार है ताए हमारा। जवन काल सब जगत बनायो, देव दया जशन अपजायो। आद अंत कै अवतारा, सोई गुरु समझी हो हमारा। नमस्कार तिसी को हमारी, सल्प जज ने आप सवारी। सेवकन को सेव गुण सो दियो, सतरन को पल मुहबत कियो। कड़कड़ के अंतर की जानत, पले परे की पीर पिशानत। चीटी ते कुंचरे अस्तूला, सब पर कृपा देश कर फूला। संतन दो पाए ते दुखी, सुह पाए साधन के सुखी। एक एक ही पीर पिशान है, कड़ कड़ के पढ़ पढ़ के जान है। जा बुद कर करां कर तारा, पर जा तर तब धे अपारा। जाबा कर कर तो कब हूँ, तुम्हें मिलत दे तर सब हूँ। जेते बन से सब तारे, आवे अपने बूझ उचारे। तुम सभी तेरे तनरालम, जान बेपे तेरे आलम। निरंकार निर्विकार निर्लंब, आद अनिल अनाद संभ। ताका मूढ़ चात पेदा, जागो पे न पावत बेदा। ताको गर्पान अनुमानत, महामूढ़ कह पे न जानत। महादेव को कह सदा शिव, निरंकार का चीनत नैं भेव। आवे अपनी बुद्ध है जेती, बरनत पेन पेन तोहे तेती। तुमरा लखन जाए पसारा, के बेसा ब्रह्म संसारा। ये कह रूपानूप स्वरूपा, रंग ब्योराव कहीं पूपा। अंडा जेर से तरीकी नहीं, उत्पय खान बहुर रच दीनी। कहूं भू राजा हम बैठा, कहूं सिमरियो शंकर कैठा। सगरी से दिखाए अचंभव, आज गासरू से अंभव। अब रक्षा मेरी तुम करो, सिख बार सिख संगरो। दो जिते उठ तो पाता, सकल मलेश करो रण गाता। जया तू सब सरनी परे, तिनके दुष्ट दो तो है मरे। और जमन बापरे तिहारे, तिनके तुम संकट सब ठारे। जो काल को कबार ते आए हैं, ताके काल निकट नहीं आए हैं। रक्षा होए ताए सब काला, दुष्ट रीत करे तद काला। कृपा दृ तन जाए न हर हो, ताके ताव तनग में हर हो। रेद सेद कर्म सब होई, दूसै सस के न कोई। एक बार जिन तुम्हें संभारा, काल फांते ताए उबारा। जे नर नाम त्यार हो कहा, दार दूदो तेरा। खड़ग के तमें सरन तिहारी, आप दे लिहो अबारी। सर्व डोर मोहो सहाई, दोष दो ते लिहो बचाई। सवैया

साईं मियां मीर नूं गुरु अर्जन देव कह रहे ने, कहिंदे साईं जी तुसी किहनूं इह की कौतक वरता रहे हो, इन्नियां पावरां दे हुंदियां होइआं तत्ती लोह ते किथे हर मंदर साहिब दे चंदोए फुल्लां दी बरखा ते किथे शीश उत्ते तत्ती रेत पै रही है, किथे मखमली चढ़ोले और तत्ती तवी। गुरु अर्जन देव महाराज कहन लगे, कहिंदे साईं जी शां असीं कुर्बानी दा ढंग दस रहे हां सच दे सूल ते खड़न वास्ते। सरकार कहिंदी है कि मुसलमान प्रमाण कर लो होना, असीं कहिंदे नहीं, सानू मर जाना चंगा लगदा, मौत विचों जिंदगी है, क्योंकि लोग कहिंदे मर जाना, मर मौत विच जिंदगी है। असीं एक ढंग दस रहे मरना किवें है, कबीर जिस मरने दे जग डरै मेरे मन आनंद, मरने ही ते पाइए पूर्ण परमानंद, मौत एक टल सचाई है। कहिंदे असीं सच दी खातर खड़े हां, सुखां विच तां सारी दुनिया हसदी है, सवाल तां तां है जे कदे दुखां विच भी उवें मुस्कराया जावे, पर नहीं। कहिंदे असीं ढंग दसदे हां, सुनो अगो साईं मियां मीर की कहिंदे आ।

वाणी एक ओंकार सतगुर प्रसाद श्लोक महला तीजा शब्द रते वडहंस है सच नाम उरतार सच संग्रह सद सच रह सच्चे नाम प्यार।

बताया। तिस सतगुर की सब पगी पवो जिन मोह अंधेर चुकाया। सो सतगुर कहो सब धन धन जिन हर भगत भंडार लहाया। सलोक महला तीजा सतगुर मिले भुख गई भेखी भुख न जाई।

मोहल्ले पहले के लिखे टूंडे असराजे की तुनी श्लोक महला पहला। बलिहारी गुरे अपने दिहाड़ी सदवार, जिन मानस के देवते किए

कूड़ प्रजा कूड़ सब संसार कूड़ मंडप कूड़ माड़ी कूड़ वैचनहार कूड़ सोयना कूड़ रूपा कूड़ पहनहार कूड़ काया कूड़ कपड़ कूड़ रूप अपार कूड़ मिया कूड़ बीबी खप होई खार कूड़ कूड़े ने हो लगा विसरिया करतार किस नाल की जय दोस्ती सब जग चलन हार कूड़ मिठा कूड़ माख्यों को डोबे पूर

कराईंदा बड़ बड़ा उड़ मेदनी सिर सिर धंधे लाईंदा नदर पठी जे करे सुल्ताना काउ कराईंदा धर्मंगण पिखना पाईंदा धर्मंगण पिखना पाईंदा।

हर धन संचिए पाई, जे हालत पलत हर हुए सखाई रहाओ। सत संगती संग हर धन खटिए,

लगाई। साकती पाप करके बिखिया तन संचिया, तिना एक वेख नाल न जाई, हलते विच साकत दुहेले पए, हथों छुड़क गया अगे पलत साकत हर दरगाह, टोई ना पाई। इस हर धन का शाह हर आप है संतो, जिसनों दे सो हर धन लद चलाई।

मुख उजल सदा सुखी नानक सिमरत एक वाहिगुरु जी। गौड़ी कबीर जी पिंड मुऐ जीओ के कर जाता शब्द अतीत अनाहद राता।

सतगुरु जी कृपा करन, गुरबाणी कीर्तन की इतनी सेवा प्रवान करना जी, हुई भुलां की खिमा लवाओ, हाजरी आखो जी, वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह।

0: सत्कार जो गुरु प्यारिशाह सिंह जी श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी के चरण शरण में तुम जुड़ बैठे हो, सतगुरु तुहाड़ी कीती हुई अरदास, तुहाड़ी सारियां दी हाजरी, गुरु ग्रंथ साहब महाराज अपने दर कर प्रवान कर अपने दरों करो तुहानू सारियां नू तंदुरुस्तियां, चढ़दियां कलां, खुशियां भरे समय ते अमृत वेले दे उद्दम सतगुर बख्शिश करे। आओ सारी संगत चकाओ शीश बुलाओ फतेह। वाहेगुरु जी का खालसा,
1: वाहेगुरु जी की फतेह।
0: बेअंत संगतां घरां च बैठियां लाइव सुन रहियां ने, असीं सतगुरां अगे अरदास बेनती करदे वाहेगुरु उन्हां दीआं हाजरियां भी प्रवान करन, चढ़दी कला बख्शिश करन। गुरु खालसा जी, रात असीं दीवान विच गुरु अर्जन देव महाराज की शहादत बयान कीती है कि गुरु अमरदास महाराज जी दे जवाई दमाद बीबी भानी जी दे पति गुरु रामदास महाराज जी दे सुपुत्र गुरु अर्जन देव महाराज, जिन्हां ने थोड़ी उम्र विच बड़े बड़े कार्ज किए, गुरु अर्जन देव महाराज जी ने गुरबाणी नूं इक थां उत्ते संपाद किया। और जदों गुरु अर्जन देव महाराज लाहौर नूं शहादत पाउण वास्ते तुरन लगे, उन्होंने लाहौर जाण तों पहलां एक दरबार लाया, संगतां आईयां, बाबा बुढ़ा जी, भाई गुरदास जी, जुम्मेवार, मूर्तवार, गुरसिख और छेवें पातशाह महाराज जी ने सलाह करके माता गंगा जी नाल अपनी धर्म पत्नी नाल, और गुरु अर्जन देव महाराज ने हुक्म किया कि साड़ी शहादत पक्की है, क्योंकि जिहड़े कार्ज सी अरंभे से उस सिरे लाए ने, सरकार नहीं चाहती कि दूसरा धर्म प्रफुल्लित हो। असी गुरु नानक देव महाराज का जो सिद्धांत, जो मिशन, जो उन्होंने विचारधारा, उस धर्म को अगह लेके जा रहे हैं, और सरकार दे नाल कुछ विरोधी बंदे ने जिन्हां विच गुरु अर्जन देव महाराज का सका भरा बड़ा पृथ्वी चंद, भतीजा मेहरवान, इन सारिया ने रल के शिकायत करके गुरु अर्जन देव महाराज की दायर मुकदमा किया है। गुरु अर्जन देव महाराज कह लगे, कहने साडे तो मगरों सिखा दे छेवें पातशाह, छेवें गुरु हरगोबिंद साहब महाराज होंगे, हथी बाबा बुढ़ा जी को जिम्मेवारियां निभा के तख्त उत्ते बिठा लिया गया। गुरु हरगोबिंद साहब ने 25 मई 1606 ईस्वी और गुरु अर्जन देव महाराज जदों शहादत देने वास्ते तुरे ने तो जिम्मेवारियां संभाल के गए कि छेवें पातशाह गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी नूं शस्त्र विद्या सिखा लेनी। और जो छेवें पातशाह महाराज जदों गुरु अर्जन देव महाराज ने जिम्मेवारी संभाल दिती और लाहौर विच गुरु अर्जन देव महाराज की शहादत हुई, उन्हां दी शहीदी तो मगरों छेवें पातशाह गुरु हरगोबिंद साहब गुरु नानक के तख्त उत्ते सुभायमान हो गए। उन्होंने होर भी असारू काम आरंभे, अकाल तख्त दे सामने हरिमंदर साहब दे खुले विहड़े विच अकाल तख्त बुंगा, जिहनूं आपां अकाल बुंगा कहिंदे, इक थड़े दी उसारी करवाई। कोई राज, कोई मिस्त्री इहनूं नहीं लाया, गुरसिखां ने रल मिल के इकट्ठे हो के आप बनाया। और छेवें पातशाह महाराज ने पिछली सारी परंपरा जिवें दंगल करने, ਕਬੱਡੀ, ਘੋੜ ਸਵਾਰੀ, ਸ਼ਸਤਰ ਪਹਿਨਣੇ, ਕਿਲੇ ਉਸਾਰਨੇ, ਇਹ ਕੰਮ ਆਰੰਭ ਕੀਤੇ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਭਰੇ ਲਹਿਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਖਿਆ। ਉਹ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਰੁਮਾਲੇ, ਚੰਗੇ ਦਛਾਲੇ, ਚੰਗੀਆਂ ਪਟਾਵਾਂ ਲਿਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਵਕਤ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪਰਮ ਪੂਜਨੀ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਿ ਸ਼ਸਤਰ ਪਹਿਨਣੇ, ਤੇ ਸ਼ਸਤਰ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਮਨੁੱਖ ਅਧੂਰਾ। ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਤਸੀਹੇ ਦੇ ਕੇ ਰੇਤ ਪਾ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ। ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਮੀਰੀ ਪੀਰ ਦੀਆਂ ਦੋ ਤੇਜਾਂ ਪਹਿਨ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਤਖ਼ਤ ਉੱਤੇ ਸਭਾਈਮਾਨ ਹੋਏ। ਜੋਸ਼ ਔਰ ਹੋਸ਼, ਮਾਲਾ ਖੰਡਾ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਔਰ ਕ੍ਰਾਂਤੀ, ਬਾਣੀ ਔਰ ਕੁਰਬਾਨੀ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਔਰ ਪੋਜੀਟਿਵ, ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਉੱਤੇ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਨ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਔਰ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਚੰਗੇ ਘੋੜੇ, ਚੰਗੇ ਸ਼ਸਤਰ, ਚੰਗੀਆਂ ਜਵਾਨੀਆਂ, ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਵੋ। ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤਖ਼ਤ ਤੇ ਬਹਿੰਦਿਆਂ ਸਾਰ ਅਸਾਰੂ ਕੰਮ ਆਰੰਭ ਇਉਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

छेवे पातशाह गुरु हरगोबिंद साहब महाराज पहला पृथ्वी चंद ताए ने छेवे पातशाह नु खत्म करन च मकाउन च को कसर नहीं छड़ी। गुरबाणी का कथन है, हर हर करत पूतना तरी बाल घातनी कवटा भरी। जड़ी कृष्ण नु मारन आई सी ओ परमात्मा दा नौ लेके तर गई। पृथ्वी चंद ने गुरु अर्जन देव महाराज दे सपुत्र हरगोबिंद साहिब महाराज नु खत्म करन वास्ते दुध विच जहर मलाई, खत्म हो जाए। एक मदारी कोलो जोगी कोलो सप लैके छड़िया भी लड़के मर जाए, मेरा पुत मेहरबान गुरु नानक दे तख्त उते बैठे। पर जिन्हों वाहेगुरु रखदा होवे उन कौन मार सकदा, जेरे उते सतगुरु नानक दा हाथ होवे। उस समय तो निकल के छेवे पातशाह अज जवान होए, अज चंदू लाल दे पाप उबड़े। चंदू लाल लगा पाप कमाउण, आ वेखिए की करदा केड़ी चाल चलदा। पर बटोआ मन विच सोचदा की करा, गुरु दे दरबार विचों बंदा पट्टा जां सरकार नूं चुगली मारा। हुण ब्यौंता ऐ

ना कोय। देख दर्शन मन साधारे, पाप सगले जाहे, हौ तिन कै मलिहारणे, जे गुर की पैरी पाहे। साध संगत मन वसै, साचु हर का नाउ, सेवड भागी नानका, जिना मन एह पाओ। श्री राग महला पांजवा। सांच हर तन पूज, सतगुर छोड़ सगल विकार, जिन तू साज सवारिया, हर सिमर होए उधार। जप मन नाम एक अपार, प्राण मन तन जने दिया, हृदय का आधार। रहाओ काम क्रोध हंकार माते, व्यापिया संसार। पाओ संत सरणी लाग, चरणी मिटे दुख अंधार। सत संतोख दया कमावै, एह करनी सार। आप छोड़ सब होए रेणा, जिस दे प्रभ निरंकार। जो दिसे सो सगल तू है, पसरिया पासार। कहो नानक गुर भरम काटिया, सगल ब्रह्म विचार। श्री राग महला पंजवा। दुखरत सुकरत मंदे संसार, सगलाना दोहों ते रहत। जगत है कोई बिरला जाना, ठाकुर सर्वे सामाना। क्या कहो सुनो स्वामी, तू वड पुरख सुजाना। रहाओ मान अवमान मंदे, सो सेवक नाही तत् समदर्शी। संतो कोई कोट मंदाही, कहन कहावन वे कीर्त गिर करला। कथन कहन ते मुक्ता, गुरमुख कोई विरला। गत अवगत कछ नदर ना आया, संतन की रेण नानक दान पाया। श्री राग महला पंजवा कर सतमा।

हो जानू आपा सभी मद सभैती बाहर बेमुताज बापा। पिता हो जानो नाहीं तेरी कवन जुगता, बंधन मुक्त संतो मेरी राखी ममता। पै कृपाल ठाकुर रेहो आवन जाना, गुरमिल नानक पार ब्रह्म पछाणा। श्री राग महला पंजवा कर पहला, संत जना मिल पाईया काटणिया जमकाल। सच्चा साहब मन बुठा हुआ खसम दयाल, पूरा सतगुर पेटिया बिनसिया सब जंजाल। मेरे सतगुरा हो तुद विट हो कुरबान, तेरे दर्शन को बलिहारण तुस दिता अमृत नाम। रहाओ जंतु सेव्या भाव कर से पुरख सुजान, तिना पिछे छुट्टिया जिन अंदर नाम निधान। गुरु जीवन दाता को नहीं जिन दिता आत्मदान, आई सी परमाणु है जिन गुर मिलिया सुभाए। सच्चे सेती रते अंदर गै बैसन जाए, करते हथ बड़िया पूर्व लिखिया पाए। सच करता सच करनहार, सच साहब सच टीक। सचो सच वखाणिया सचो बुद्ध विवेक, सरब निरंतर रब रहा जप नानक नीवै एक। श्री राग महला पंजवा। गुर परमेसर पूजिया मन तन राय प्यार, सतगुर दाता जी का सबसे दे आधार। सतगुर बचन कमावने सच्चा इहो विचार, बिन साधु संगत रतिया माया मोह सबसार। मेरे साजन हर हर नाम समाल, साधु संगत मन वसै पूर्ण होवै काल। रहाओ गुर समराथियों पार, गुर बड़ पागी दर्शन होए। गुर अगोचर निर्मला गुर जीवन अवर ना कोए। गुर करता गुर करनहार, गुरमुख सच्ची सोए। गुर ते बाहर किछ नहीं गुर कीता लोड़े सो होए। गुर तीर्थ गुर पार जात, गुरमानस मनसा पूर्णहार। गुरदाता हर नाम दे उदरे सब संसार। गुर समरथ गुर निरंकार, गुर ऊचा गामी अपार। गुर की महिमा गम है क्या कथी कथनहार। जितड़े जितड़े फल मन बाछिए तितड़े सतगुर पास। पूर्व लिखे पावने साच नाम दे रास, सतगुर सरणी आया बहुड़ नहीं विनाश। हर नानक कदे ना विसरो ए जियो पिंड तेरा रास। श्री राग महला पंजवा। संत सुनो सुनो पाइयो छूटन साचे नाए। गुर के चरण सिरे बने तीर्थ हर का नाओ। अगे दरगे मनिए मिले न थावे थाओ। भाई रे साची सतगुर सेव, सतगुर तुठे पाई है पूर्ण लखी भेव। नहाओ सतगुर विटों वारिया जिन दाता दिता सच नाओ। आंदन सच सलाहना सचे के गुण गाओ। सच खाना सच पहनना सचे सच्चा नाओ। सास ग्रास न विसरै सफल मूर्त गुर गुण गाओ। सच खाना सच पहनना सचे सच्चा नाओ। सास ग्रास न विसरै सफल मूर्त गुर आप। गुर जीवन अवर नंद सही आठ पहर तिस जाप। नदर करे ता पाई है सच नाम गुणतास। गुर परमेश्वर वेकु है समय रिया समाए। जिन को पूर्व लिखिया सही नाम ते आए। नानक गुर शरणागति मरे न आवे जाए। श्री राग महला पहला कर पहला अष्टपदिया एकोंकार सतगुर प्रसाद। आख आख मन वावना जियो ज्यों जापे वाए। जिसनु वाए सुनाई है सो केवड़ कित थाए। आखण वाले जेतड़े
ਸਭ ਆਖੇ ਆਖਰੇ ਲਿਵਲਾਏ ਬਾਬਾ ਅਲਹਿ ਗਾਵੇ ਪਾਰ ਪਾਕੀ ਨਾਹੀ ਪਾਕੂ ਥਾਏ ਸੱਚਾ ਪਰਵਦਗਾਰ ਰਹਾਉ ਤੇਰਾ ਹੁਕਮ ਨਾ ਜਾਪੀ ਕੀਰਤਨਾ ਲਿਖ ਨਾ ਜਾਣੇ ਕੋਏ ਜੇ ਸੋ ਸਾਰ ਮਿਲੀਏ ਤਿਲ ਤਿਲ ਨਾ ਪੁਜਾਵੈ ਰੋਏ ਕੀਮਤ ਕਿਨੇ ਨਾ ਪਾਈ ਆ ਸਭ ਸੁਣ ਸੁਣ ਆਖੇ ਸੋਏ

दरवेश रशीद बरकत तिन को अगली पढ़दे रहन दरूद पुछना साजी पुछना ढाहे पुछना दे वैले अपनी कुदरत आपे जाने आपे करन करे सबना वेखे नदर कर जे भावै तैं दे थावा नाव न जानिए नावा केवन नाओ जिथे वसे मेरा पातशाह सो केवड़ है थाओ अंबड़ कोई न सकई हो किसनों पुछन जाओ वरना वर्ण भावनी जे किसे वड़ा करे वड़े हाथ बनाइया जै भावै तैं दे हुक्म सवारे अपने चसाना ढिल करे सब को आखी बहुत बहुत लैने के विचार केवड़ दा तै आखिए दे कह रहा सुमार नानक टूट न आवई तेरे जुगे जुगे भंडार मोहला पहला सबे कंत महेलिया सगलियां करी सिंगार गणत गणावने आईया सुहावे स्वीकार

विनाश मुंदे गुण नासी सुख होए अवगुण त्याग समाई गुरमत पूरा सोए नहाओ बिन राशि वापारिया पक्के कुंडा चार मूल ना बुझे अपना वस्त्रे कनवार बैन वखर दुख अगला कूड़ मुठी कूड़ यार लहावैन सुना उतना परखे रतन विचार वस्त लहे कर अपने चले कार्ज सार बन जा रहा स्यों वणज कर गुरमुख ब्रह्म विचार संतान संगत पाई है जे मेले मिलनहार मिलया होए ना बिछड़े जिस अंतर ज्योति अपार

ना कोई। श्री राग महला पहला गुरते निर्मल जानिए, निर्मल देह शरीर निर्मल साचो मन विषय सो जाने अपीर। सहजे ते सुख अगलो ना लागे जमतीर, भाई रे मैल नाई निर्मल जल नाई। निर्मल साचा एक तू होर मैल परी समझाई रहा। हर का मंदिर सोहना किया करने हार, रब सास दीप अनूप ज्योत त्रिपमन ज्योत पार। हाट पट्टनगढ़ कोठड़ी सच सौदा व्यापार, ज्ञान अंजन पह पंजनाम देख निरंजन पाए। गोबिंद पर गुर सब जानी है जे मन राखी ठाए। ऐसा सतगुर जे मिले ता सहजे लहे मिलाए। कस कस वटी लाई है परखे हित चित लाए, खोटे ठौर ना पाए नी खरी खजाने पाए। आस अंदेसा दूर कर यो मल जाए समाए, सुख को मांगे सब को दुख ना मांगे कोई। सुखे को दुख अगला मन मुख बूझ ना होए, सुख दुख सम कर जानी है। शब्द भेद सुख होए भेद पुकारे वाचिए, बाणी ब्रह्म व्यास मन जान सेवक साधका नाम रते। गुणतास सच रते से जन गए हो सद बलिहारे जास। चौ जुग मैले मल भरे जिन मुख नाम ना होए, भगती भाई विहूणिया मुँह काला पत खोए। जिने नाम विसारिया अवगुण मुठी रोए, खोजत खोजत पाया डर कर मिले मिलाए। आ पछाणी घर वसे होमे तृष्णा जाए।

नाय। मन महे मनुआ जी मरै ता पिर रावे नारू, इकत तागे रल मिले गल मोतियन कहार। संत सवा सुख उपजै गुरमुख नामी आधार, खिन में उपजे खिन खपै खिन आवे खिन जाए।

विचार शब्द सुरत सुख उपजाय प्रवरा तो सुसार ज्यों भावै त्यों राख तू मैं हर नाम आधार मान रे साची खसम जाए जिन तन मन साज सिंगारिया।

जलाई। हर नामे तुल न पुजई, जे लख खोटी कर्म कमाई। अर्ध शरीर कटाइए, सिर करवत रहाय। तन है मन चल गालिए, पी मन ते रोग न जाई। हर नामे तुल न पुजई, सब डिठी ठोक ठोक मजाई। कंचन की कूट तार दत करी,

अचार सब कोई उचा आखिए नीच न दिसै कोई। एक ने पांड साजे है, एक चानन तहें लोए। कर मिले सच पाई है तन तुर मक्ष न मिटे कोई। साध मिले साधु जने संतोख वसे गुरु पाए। अकथ कथा विचारी है जी सतगुर मही समाए। पी अमृत संतोखिया अंदर गे पैंदा जाए। काट काट वाजे किंगरी आम दिन शब्द संभाए। बिरले कौ सोजी पही गुरमुख मन समझाए। नानक नाम न विसरै छुटे शब्द कमाए। श्री राग महला पहला चिते दिसे ढौल हर बगे बंक द्वार। कर मन खुशी उसारिया।

रहाउ। आपे हर जग जीवन दाता, आपे भग बख्श मिलाए। जी जानते क्या बिचारे, क्या को आख सुनाए। गुरमुख आपे दे वड़ियाई, आपे सेव कराए। देख कुटुंब मोहे लुभाणा, चलदिया नाल न जाई। सतगुर सेव गुण धान पाया, तिसकी कीम न पाई। प्रभ सखा हर जीओ मेरा, अंते हुए सखाई। पई उड़ै जग जीवन दाता, मन मुख पत गवाई। बिन सतगुरु को मग न जाने, अंधे ठौर न काए। हर सुगदाता मन नहीं वसिया, अंत गया पछताई। पई उड़ै जग जीवन दाता, गुरमत मन वसाया। आन दिन भगत करे दिन राती, होमे मोह चुकाया।

समझाए। सतगुरु शब्द सुनाया हौ सद मनिहारी जाओ, अपने मन चित कहे कहाए, बिन गुरु आपन जाई। हर जियो भगत वसल सुखदाता, कर कृपा मन विसाई। नानक

आओ बिन सतगुर प्रतीत न आवई, नाम न लागू भाऊ सुपने सुख न पावई, दुख में सवी समाए। जे हर हर कीचे बहुत लुचिए, किरत न मेटिया जाए। हर का भाणा भगती मनिया, से भगत पै दरथाए। गुर शब्द जड़ाए रंग सियों, बिन कृपा लिया न जाए। जे सो अमृत नीरी है, भी बिख फल लागे ताए। से जन सचे निर्मल है, जिन सतगुरु नाल प्यार। सतगुर का भाणा कमाम दे, बिख होमे ताज विकार। मन हठ किते उपाय न छुटी है, सिमर शास्त्र सोधे जाए।

न पाए। सब देहों में मारिए माया का भ्रम जाए, नाम पदार्थ पाइए गुरमुख सह सुभाए। बिन गुरु गुण न जापनी बिन गुण भगत न होए, भगत वसल हर मन वसिया। सहज मिलिया प्रभु सोए, नानक शब्दे हर सलाहिए कर्म प्राप्त होए। श्री राग महला तीजा, माया मोह मेरे प्रभु की ना आपे भ्रम पुलाए। मन मुख कर्म करे नहीं बूझे, बिरथा जन्म गवाए।

सहज मिले प्रभ सोए रहाओ। परम गया पौ भागिया हर चरणे चित लाए, गुरमुख शब्द कमाईए हर वसे मनवाए। घर महल सच समाई है, जम काल ना सके खाए, नामा छीम्बा कबीर जुलाहा पूरे गुरतिंगत पाई। ब्रह्म के बेते शब्द पछाणे, होमें जात गवाई।

और नानक टूट न आवै दिए देव नुहार। श्री राग महला तीजा। सत गुर मिलिए फेर न पवै जन्म मरण दुख जाए। पूरे शब्द सब

आए ना जाए थिर सदा गुर शब्दी सच जान। नरहाओ जे को हो वै दुबला नंग भुख की पीर। दमड़ा पल्ले ना पवै ना को देवै तीर।

रंग दोहा श्रीया का खसम आप अवर नंदू जा थाऊ सतगुरु तुठे पाया नानक सच्चा नाओ श्री राग महला पंजवा कर पंजवा जानो नहीं भावे कवन बाता मन खोज मार्ग रहाओ ध्यानी ध्यान लावे।

धंधड़ा तुम गुसाई सेवी सचड़ा नौ निदनाम निदान हर मैं पल्ले बद्दा शक नियो मैं सुखी हूँ सुख पाया।

सुने न वैण अखे अंध जीव रस नाही रे परे प्राको ताना गुण अंतर नाही क्यों सुख पावे मन मुख आवन जाना खाड़ पक

करे गुर मेले, सो हर हर नाम समाल, कहो नानक तीजे पहरी प्राणी, से जाए मिले हर नाल, चौथे पहरे रहन कै बनजारिया मित्रा, हर

हाथ लिखया आया पकड़ चलाया, मन मुख सदा दुहेले जिनी पूरा सतगुरु सेविया, से दरगे सदा सुहेले।

संत एकोंकार सतगुर प्रसाद मुंद अयाणी पैड़ै क्यों हर हर दर्शन क्यों कर हर दर्शन पिखाई हर हर अपनी कृपा करी गुरमुख सौरड़े कम सिखाय सौरड़े कम सिखाय गुरमुख हर हर सदा त्याय सहिया मिच फिरे सुहेली हर दरगे बहां लुड़ाए लिखा धर्म राय की बाकी जप हर हर नाम बिरखाय मुंद अयाणी पैड़ै गुरमुख हर दर्शन दिखाय ब्याह हुआ मेरे बाबला गुरमुखे हर पाया अज्ञान अंधेरा कटिया गुर ज्ञान प्रचंड मलाया।

दान दिवाया। खांड ब्रह पागांड खांड पर पांडु अर शोभा थोई निवदान रले रलाया। होर मन मुख दाज रख दिखाले सो कूड़ हंकार कज

चले दुख रोए, जन नानक नाम ते आया हर अंत सखाई होए, मैं हर बिन अवर ना कोए, घर गुर सुनाई पाई है बन जा रहा मित्रा, बड़ भाग प्राप्त होए रहाओ संत जना पाई।

सुख पाया सच नाम गुणतास गुरमति जा पछाणिया राम नाम परगास सचू सच कमावना वड्याई वड्डे पास जियो पिंड सब तिसका सिवत करी अरदास सच।

आप खाए मन निर्मल होवै गुर शब्दी विचार नानक शब्द रते से मुक्त है हर ज्यो हेठ प्यार पौड़ी हर की सेवा सफल है गुरमुख पावे थाए जिस हर पावे तिस गुर मिलै सो हर नाम ते आए गुर शब्दी हर पाई हर पार लंघाए मन हठ किने न पायो पुछो वेदा आए नानक हर की सेवा सो करे जिस लय हर लाए श्लोक महला तीजा नानक सो पूरा व्रयाम जिन विचों दुष्ट हंकरन मारिया गुरमुख नाम सा लाहे जन्म सुवारिया आ

सब दुख सुख बिसारिया, महला तीजा गुरपुरे हर नाम दृढ़ाया, तिन विचों परम चुकाया, राम नाम वर कीर्तन गाई, कर चानन मग दिखाया। हो

मैं हर हर नाम यो धरिय जियो। हम चात्रक दीन सतगुरु शरणाई, हर हर नाम बूंद मुख पाई। हर जल निधम जल के मीने, जन नानक जल बिन मरिय जियो। मांझ महला चौथा, हर जन संत मिलो मेरे भाई। मेरा हर प्रभ दसो मैं भुख लगाई। मेरी शरदा पूर जग जीवन दाते, मिल हर दर्शन मन भीजै जियो। मिल सत्संग बोली हर बाणी, हर हर कथा मेरे मन पाणी। हर हर अमृत हर मन भावै, मिल सतगुर अमृत पीजै जियो। वडभागी हर संगत पावै, पागहीन भ्रम चूटां खावै। बिन पागां सत संग ना लभे, बिन संगत मैल भरी जै जियो। मैं आए मिलो जग जीवन प्यारे, हर हर नाम दया मन तारे। गुरमत ना मीठा मन पाया, जन नानक ना मन भी जै जियो। माझ महला चौथा, हर गुरु ज्ञान हर रस हर पाया। मन हर रंग राता हर रस पी आया। हर हर नामुख हर हर बोली, मन हर रस टुल टुल पाउंदा जियो। आवो संत मैं गल मिलाइए, मेरे प्रीतम की मैं कथा सुनाइए। हर के संत मिलो मन देवा, जो गुरबाणी मुख चौंदा जियो।